0: え、あれれれれ、ボディコー。 Hi guys。
1: Oh, hi。
0: कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल टीना जैसी ना? See?